0: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। थोड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ थोड़े फेवरेट शो बॉबी पंजाबी टॉक शो के इस लाइव सैशन में। तो आप जुड़ चुके हैं अपने बहुत ही सत्कारयोग अंकल हरवंत सिंह चौहान जी ना, तो आप उन्होंने गलबात करते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल अंकल जी।
1: सत श्री अकाल जी।
0: अंकल जी सेहत ठीक है जी?
1: ठीक ठाक है, थोड़ा टायर्ड है, कोई रिहर्सल नहीं की, बिना रिहर्सल दे आया।
0: हाँ जी।
1: रिस्पेक्टेड residents of Griffith, ladies and gentlemen, and Sikh Naujawan Sabha de members, sabhnaan nu 2MOI di team valon pyar bhari sat sri akaal pranam namaste. Aaj 10th दिसंबर दिन वीरवार रात्रि दास हरवंत सिंह चौहान 95.1 FM ते लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ते आप दे रूबरू होया है। दास पंजाबी सॉन्ग अते एक हिंदी सॉन्ग पेश करेगा, आस रखते हाँ कि तुम इस लाइक करोगे।